नीले चिट्टे हो सकते ने पर दुध सारिया का चिट्टा है। भाई साहब कहते ने संसार विचरण वाले इथे कपड़े काले हो सकते ने, किसी की चमड़ी काली है, किसी की श्वेत है, किसी की लाल है, पर चेते रखी जे गावा रंग बिरंगिया ने दुध चिट्टा है। शक्ल वक्ख वक्ख हो सकती है, रंग वक्ख हो सकते ने, पर परमात्मा वक्ख नहीं। परमात्मा सारिया विच केवल एक ही होगा, जोत ओदी सारिया विच है। भाई साहब ने फिर एदी उदाहरण बड़ी सोहनी दिती कि किवें एक सारिया विच एक संत क्यों ते एक साधक क्यों। गुरसिखो असीं गुरु जी कोल आउने आ, जिहड़ियां गल्लां बाबे नानक ने बाणी विच कहियां ने ना, उहनां नूं असीं इह क्यों नहीं मनदे वी इह मैनूं कही है, क्योंकि मैं भी जो उपदेश करना मेरे हाथ मैं कौन जी दे रहे, मैं दूजे में चार लग पैना है। मैं कहना नहीं, मैं तेन समझ पाए धर्म हमेशा। मैं उस दिन भी बेनती की धर्म हमेशा अपने तो शुरू होंदा है, दूजे तो नहीं। हजूर ने बाणी विच मेहर भी की, बाबा नानक जी का एक शब्द है, मैं वह कह के फिर इस विषय वाल अगे तुरना। सरोवर एक पानी का भरिया है, ओदे विच कमल के फुल ने, उस कमल के फुल की सुगंधी लैन वाले भवरे ने, पर चेते रखियो उस फुल के कोल निर्मल पानी नहीं है, उस फुल के कोल चिकन भी है। अज तो सदियां पहला बाबे नानक ने साडे अंदर का विश्लेषण कर दिता कि लोग धर्म स्थाना ते जाते कि शब्द आंदा है, बिमल मजार बस निर्मल जल पदमन जावल रे, पदमन जावल जल रस संगत संग दोक नहीं रे। दादुर तू कदे न जान सरे, भगत सबाल बस निर्मल जल अमृत ना लख सरे। ये मैं अर्थ अर्थ कर देना, बेमल मजहार कहने पानी बिल्कुल मैल तो रहता है, बम बिमल मजहार बस निर्मल जल पदमल जावल रे। पदमल का अखरी अर्थ हूं कमल का फुल, ते जाले का अर्थ हूं जावल का अर्थ है जाना। बाबा नानक जी कहने दुनिया के लोगों केड़े पासे तुरते पयो, ए गति नहीं। कहने एक सरोवर का पानी निर्मल है, उस निर्मल पानी के जाला खलोता है, उस निर्मल पानी के कमल का फुल खलोता है, उस निर्मल पानी के कमल दिया फुल दिया जड़ा डड्डू बैठा है, उस कमल फुल शिखर से चूसन वास्ते घबरा आ रहा। गुरु तो निर्मल सरोवर है, खिमा करो। कई सज्जन इतों कमल वर्गे खेड़े लैके जाएंगे, कई मेरे वर्गे केवल जाला बन के बैठे रहने। ऐसे होंगे जेड़े भवरे बन के आने, शब्द का रस चूस के चले जाएंगे, तो कितनी बदकिस्मती होगी। कई एडिया जड़ा च बैठे हो केवल चिकड़ी खाए जाएंगे। बिमल मजहार बस निर्मल जल पदमल जावल रे, कह लगे पदमल जावल जर संगत संग दोख नहीं रे। कमल का फुल पानी विच रहिंदा, जाले विच रहिंदा, चिकड़ विच रहिंदा, पर किसे भी परवाह नहीं करता। चिकड़ विच रहने के बावजूद भी सिरा उच्चा करके ले जांदा, कहिंदा छड्डो परां, मैं चिकड़ वल ध्यान नहीं देना, मेरा संबंध सूरज नाल है। इस चिकड़ विच ते कदी खेड़ा नहीं आना, सूरज दीआं किरणां पैण दी देर मैं करोड़ां को दूर ओदी खिच नाल खेड़ जाणा। प्यारिओ इक कमल का फुल पानी तो चिकड़ तो जाले तो नरेज, ते जे गुरु कोल आके भी मेरिया मना तेरे कई साल भटक के भी तेरे अंदर का जाला नहीं लथा, केड़ी थां ते जाके अंदर दी मैल धोवेगा। बाबा जी ने दूसरा प्रमाण दिता, कहन लगे दान जा मझ है उन्हों असी चोने पिंडा थावां ते जेड़े जिमीदारा करदे आ सजन उन्होंने पता है। तुसी कदी देखो गां दा मझ दा दुध जो है, गुरु ग्रंथ साहिब ने दुध नूं अमृत कहा है। पशु मिले चमियाईयां खड़ खावे अमृत दे। हुण ओह दुध दा भरिया होया पशु उस गां दा दुध चोया, ते अमृत वर्गा दुध लोकां ने पीता, किन्नी बदकिस्मती ओह चिचर दी होवेगी जिहड़ा सारा दिन उस थण दे नाल लगा रहा, पर दुध पीण दी थां ते केवल खून पीता रहा। हुण इक बछड़ा है, ओह सवेरे शाम गां कोल आउंदा है, ओह अमृत वर्गा दुध चुंग के चला गया, ते चिचर सारी जिंदगी उसके कोल रहा, पर दोखे चीज का चिचर नूं पता ही ना लगा कि जिथे मैं खून पीना पै इथे अमृत भी है। गुरमुखो खिमा करो, जेड़े असीं चिचर की तरह चोखे नेड़े ढुक ढुक बहने हैं ना, मैं बड़ा वड्डा सर्दी हाँ, चेते रखो प्यारे नेड़े रह रहे ते औगणा का खून पीने

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री

आज कल के रास्ते चलदिया चलदिया बाबे बकाले के रास्ते चलदिया हो अगे इस प्रकार बकाले भी रावी तो पार श्री करतारपुर साहब पुजे। जो करतारपुर साहब पुजे इतने सतगुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने सोचा कि साडी गद्दी दे मालक आ रहे है। आप गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अपने स्थान तो धर्मशाला उठ करके करतारपुर साहब चो अगे आ गए रस्ता दसन वास्ते। आप घोड़ी से चढ़े हुए हमने महाराज ने पूछा कि महाराज सतगुरु नानक देव जी का लंगर है इतने रेंगे है कि महाराज ने कहा साडे मगर मगर चले आओ चलो तुम दिखा देने जिन्होंने तुम दर्शन करना चाहते। गुरु अंगद साहब घोड़ी से चढ़े चढ़ाए उस प्रकार आ रहे हैं सतगुरु नानक देव जी अगे अगे जा रहे है। जिस वे करतारपुर साहब के बूहे के अगे चले गए महाराज सच्चे पातशाह ने कहा खुंड के नाल घोड़ी अपनी बन दो तो अंदर वड़ के तुम गुरु नानक साहब के दर्शन कर लो। क्यों कह के सतगुरु जी एक छोटी बरीकी बारी रूप की धर्मशाला के अंदर जा प्रवेश हो उसे सिंघासन से जाके बैठ गए। जो घोड़ी को बन के बाबा लहणे जी अंदर वड़े की देख रहे हैं कि जेडे सानू राह दसते आए है ओही गुरु नानक देव जी हैं। तो असी बड़ी गलती की है सतगुरों का सत्कार नहीं किया घोड़ी पर कहे कढ़ाने क्यों आए असी उतर के आना चाहिए सी। इस प्रकार पछतावा करते हुए गुरु साहब के चरणों की शरण पै गए। उठ के जो बाहर चकन लगे सवेर होया फिर जो की देख रहे है भाई मनी सिंह साहब ने भाई गुरदास जी वार की जन्म साखी लिखी है और लिखा है कि देवी जी ज्वालामुखी है गुरु साहब के बूहे अगे बड़े सुंदर वस्त्र पहरे हुए है गहने पहरे हुए है तो झाड़ू दे रही झाड़ू दूरी देख के महाराज ने पूछा बीबी तू कौन है ये कहने की जिसनों साडा खंडूर साहब का ये जिन्ना संगवा पलसन चलिया वो ज्वालामुखी है गुरु नानक साहब के बूहे अगे झाड़ू देने वास्ते आए। ये गल वेख के सुन के सारे संघियों ने भी विखाया सारे संघियों ने कहा एक बार तो अं ज्वालामुखी जरूर परसांगे। कह लगे भी साडा तो कार्य इतने सर गया जदों गुरु नानक साहब के बूहे अगे देवी झाड़ी दिंदी है तो असं हूँ क्यों कितने जाना है इतने गुरु साहब के दारी रहोंगे। क्यों कह के सारिया नमस्कार करके आपने दिव्या ले ली जो संघ सी सारा वो सब संघ जी ज्वालामुखी पलसन वास्ते चलिया गया। जलों पलस के आए उस रास्ते आए करतारपुर साहब से गुरु अंगद साहब जी ने सारे खंडूरिया गुरु नानक साहब के चरणी पा के सुखी बख्शा। इस प्रकार साहब संघ जी बख्शिश कराई क्यों खंडूर साहब तो महाराज साहब जी जाके करतारपुर साहब की रेंगे रहे बड़ी भारी सेवा सतगुरु नानक देव जी की जिस सेवा च कोई फर्क नहीं पैन दिता रात ने ऐसी सेवा की जो भी लग गया होगा जी और जे कोई कह के ऊ नहीं है तो कह भुल गया जी। इस प्रकार महाराज साहब हर वक्त कागजा रेंगे जे कदे महाराज साहब रात्रि कहेंगे तो उस रात्रि मनते जे दिन कहेंगे दिन ही मनते बड़ी भारी आग्ञा गुरु साहब की मनी जिस आग्ञा गुरु साहब ने परख भी शुरू कर दिती सच्चे पातशाह जी ने आपके शरीर के उत्ते लस्सी आदिकों के सिक्के पा के गुरु नानक देव जी ने कमर कसे के एक छुरा बन के तानकू ग्रहण करकार उसका रूप धारण के सिक्खी ने परखना किया। उस परखण तो साहब संगत जी सिख संगत जो मत्था टेक नहीं है महाराज कहते मत्था ना टेको ये टेकने में हड्डे दो कुटके महाराज साहब ला देंगे। इस प्रकार बहुत सारिया संगत भज निकलियां जो पूरे ना उतरे जिथे बैठ के गल कराया कर गुरु महाराज साहब जी उथे जा रहा कर परख बहुत सारी की लोग कह गुरु साहब का सुभाव बदल गया। उस वे मिल मिल के विचार कराया कर महाराज साहब के नाल इस प्रकार साहब संघ जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी परख कर दिया हो फिर लंगर अठपहरा कर दिता अठपहरा लंगर करदे कई अठपहरे लंगर तो चले गए फिर तीजे दिन करता दसा दिनों तक करता लंगर बहुत सारे लोग चले गए कहते इतने की करना घर की रहेंगे। क्यों जो चले गए पर गुरु अंगद साहब जी अडोल रहे फिर खेती सिखा तो कराई।

जी जिस प्रकार आज्ञा होवे ये सुन करके बाबा वीर सिंह ने दौनिया साहब की सेवा च महाराज जी स्थापन किया। बाबे मनी सिंह साहब ने इतने लिया के श्री गुरु ग्रंथ साहब ने गुरियाली गद्दी बख्श के महाराज साहब जी ने श्री हरिमंदर साहब के ग्रंथी बनाया के उत्तर भेजे सामने, क्योंकि हरिमंदर साहब की ग्रंथी की सेवा कर रहे हो बाबा जी। बाबा मनी सिंह साहब ने सजा की आज्ञा पाल के जिन्हें साल महाराज साहब ने उन्होंने आयु बख्शी हमेशा नहीं

राखो राखन हार दयाला नानक करके कोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बानी अंदर दिते हुए सिद्धांत उन्हां नूं गुरु के सिखां ने किवें जीव के दुनिया दियां अखां सामने रखिया है उस इतिहास दे पन्ने आपां रोज विचारन दी कोशिश करनी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने और पै नहीं जंक है कंचन माटी माने नह निंदिया ने उस्तद जंक है लोभ मोह अपमाना हरक सोग ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। इन चीजों की व्याख्या है इतिहास, इन्हों की प्रतख व्याख्या है। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। कितना चाह होएगा गुरु के सिखा नू इस जिंदगी दी कालना करन जा। कल रोज अपा इतिहास दी ओ लड़ी बिचारी सी जदो 1726 दे विच तारा सिंह वां शहीद होंदा है। कैसे कैसे मोड़ बने उस तो अगली लड़ी अज तुहाडे नाल सांझी करनी।

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते

महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नू हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नू भजाउणा, सूरज वल नू मूह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नू भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नू भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नू भी पता लग गया कि मैनू किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा सतगुरु महाराज घोड़े नू इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया, बहुत

0: महाराज नूं कहिंदे इह कहिजे सिंह तुसीं खड़े कीते आ उत्थे दरवाजे ते मूहरले पासे पहरे ते ओह सारा दान इहदे कोलों खोह लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उहनां नूं
1: आवन जानो बंद करन ते तिज आदक सब संग
0: तो इस कृपा कहिंदे आउणा जांदा ना सारयां दा बंद करता ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओह ना लड़ पे कदे ओह ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नूं सुना रहे हन
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तां किसे दे कहे सुने च नहीं है ये तां ना योग अयोग जानदे ने इस प्रकार दे नाल हुण सिंह तां महाराज दे असूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे ओ जिवें पिछे जे माता जी ने एक वारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दियो मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां भी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दियो जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक है असीं थोड़े साहबजादे हां पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां इक उह गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तां तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगागा कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसी अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे ये थोड़े जिहड़े सिंह ने ये अपनी ही मन मर्जियां करदे है
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुम्हारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी काहदा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इन्हें तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दियो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारियां चीजां ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंगन छीने निसंग अस उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव कीता उन्होंने निसंग होके आ सारियां चीजां उन्होंने खोह लिया ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुरु

0: सच्चे पातशाह यह महाराज ये तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ की कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सातों क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी हित हेरन गुर ग्रीव न फेरे
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नू देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे खरे मैं होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नू देखिया ते घोड़ा भजाया
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर दई सह साए
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिंच दी।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भुखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਮਾਰ ਮੱਚੀ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थोचार,
0: तिना का पद है खालसा। इस तरह इन्हों का असी महाराज सच्चे पातशाह कहने

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमय सतगुरु मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लैके मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है, फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने, जिवें आम तौर ते सतगुरु सभा लगा के बैठदे सी। इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी जाए किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है, कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है, क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणां नूं करिए पवित्र गद के।

0: एक दसो जो लड़ाई में सूरमे जंग करते ने तनख न चला तो पहला टनकार करते ने यह क्यों करते ने
1: कहो तमाकू क्यों न छू है
0: एक होर दसो तंबाकू नू क्यों नहीं छूंदे ए की कारण है
1: कथा द्वादशी किम ने कहे
0: एक पुरानियां गल्लां चलियां आ रही ने कि द्वादशी की कथा जड़ी है या द्वादशी वाले दिन मतलब के जड़ी आउंदी है एकादशी दसवीं तो बाद फिर आउंदी द्वादशी ए रवाज हुंदा सी द्वादशी नू कथा आदिक नहीं सी करदे ए क्यों नहीं सी करदे जे तुसी सियाने हो विद्वान हो थोड़े जे कई पंडित भी ने ए गल दसो क्यों नहीं हुंदी
1: है कि श्री सतगुरु ते सब सुने कवि कुवरेश प्रथमी भने
0: इस तरह सतगुरु महाराज तो सारा कुछ सुन के ये जड़ा केशवदास दा लड़का सी कुवरेश इन्हें पहला जवाब दिता है
1: दोहेरा खाए सकल रस अन्न ते दबटे नारी भाव
0: महाराज ये जड़ा अन्न है ना इनू खा के ये रसा तो जे नाड़ियां दे विच सूखम भाव हुंदे ने ये दब जांदे हन
1: घूम नींद पीछे पचै जीव कला छुट दाव
0: पहला बहुत नींद आउंदी है फिर अन्न पचदा है उहदे तो बाद फिर होर ज्यादा गूढ़ी नींद आउंदी है इस करके वो जिहड़े जीव दे सूखम भाव ने वह उभर आउंदे ने उपर नूं जाग पैंदे हन
1: बुरे सुपन सब जंत को सच झूठ मन बूझ
0: सच के झूठ जिहड़ी गल दी दबी पई हुंदी है वह जी फिर सुपना बन जाती है पहला तो जो रोटी खाता है जीव आप एक बार सोने घूकी की नींद सुखोपत अवस्था उदू बाद फिर जदों दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पूरी गूढ़ी नींद आती है जिस कोई सुपना नहीं आता फिर उदू बाद सुपन अवस्था आती है क्योंकि बहुत ही रोटी खाद जो सौंदा है अन्न के नाल जीव के जड़े सूखम भाव ने दब जाते हैं जदों रोटी हजम होकर फिर नींद थोड़ी जी घट जाती है ये नाल फिर सुपना जड़ा है वह जीव के बुरे चंगे ख्यालात ने वो सुपना भाव धारण करते
1: इतनी जानी ज्ञान ते ता पर तुमरे सूझ
0: देखो महाराज इन्नी कु सानू जिन्नी कु पता है इन्नी कु दस दिती है यह तो है साड़ी जीवां दी सोझ बाकी महाराज तुहाड़ी सोझ सब तो उपर है बाकी तो तुसी दसना है कि सुपना जीव नूं

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च प्रवृत्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: बेद बेच दे बेद तार भूम बेच दे छत्रे।
1: बेद तार जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह बेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्रे।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करिया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह की दुनिया हौली हौली बन जाएगी।
0: आप नरक अवरन नरक करनी बने न लागे।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी ना लगना ही ना बनेगा, भाव छोड़ भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।